0: गिलास तुम कुफा भी।
1: सूतु सूत सान ने रजगल मंदे मंदी तुम मत आकाश के आराम पिछले कम से दिन तुम कुछ बला रहे म्याना का तीन म्याना का काम रहे ये तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान को रीस के जान को वा ये जन के जान मंदी तुम मत आकाश के आराम ने ये जन के रीस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतनी मान लेकिन फिर से लेन देसाना को दे मनारा का ना सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरा रे ना तभी तो सोम तांग मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना काफी ना सु पफतारा कौन सा है ये फिर ना काफी ना जाने मार सुत सा वो ना चार ले तीन रुपये का नहीं क्या ना बुला चुना ये ना जाने
3: ये सुत सान ले वचने के ते मत आकाश क्या रा सुनना ला को ले सुत तुम आते थी ये सेना वातार पे सुत जिस चीज में आफ्टर लेट सुत सान से ले सुत पे ना काफी ना टीम ना कर सारे तुम आते थी ते वाला सा सीज़न सोच सोच मोला ना सच में ऐसे साझा मापा ये रेना जब यं जमान से नहीं मापता ना जरा के सेता ये तांज ना तंग तुम
4: Havana Diego nakane chiriara de Fernando Diego ara kampanirino e te iteta Madagascar de sutun mitso san ie fankerezana hoazireo de mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafito koa antilosy mamitsika ty izay tena hoe tsy manantsaly ty izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokana tsika
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.